यशोदा मैं गीत हम तो सावधान अरे आप अर्ध अत्यक्रमिक लोको कथा वक्ते ओब उबे समीपत में आट आदर वंते आट आदर वंते बिरिंद स्वाम पुरुष आट अंगिल्लक दिक्कल चोदना वकरन कुट समहर विला वट तमंगे हरद साक्षियत मेहें विमसान न पुलवा इतर कुट सा तहान न कुट